0: मिस्टर
1: सर,
0: वो करो भाई त्रबाहो जिन्हा
1: वाला ना सर ना हमन ना कोग वाशिंग मशीनन
0: ओ गुस्तो लाऊं ताको ना जुलो कोई कोयो
1: पॉइंटी सर
0: सिगे कोंग या विटर्स गार्ड कबाओ कबाओ मो ड्राइव
1: दिल्ली पर सर दिल्ली को कबाओ मनी उस शकिनन
0: मग प्रैक्टिस को निया
1: ओके सर
0: सिगे कमिंग दो हनी माम नी मो मुलाकाओ करोन कुआ दें शकिनन पंडारा ला इना गार्ड
1: सिगे सर सिलंग डॉग जेनेट मुलाकाओ हस्ता तो अन्य को गार्ड I andam na ko daan ang sakinan. Paandaron lang na ako.